0: कितना याद रख जालिम तेरे बाबा की बाबा की बाबा की तेरे बाबा की महफिल में मैं भूख हड़ताल कर दूंगा भूख हड़ताल कर दूंगा भूख हड़ताल कर दूंगा।
1: लेकिन छोटी सी एक अर्ज है कि

किसी का, ये गोरे गोरे गालों की खातिर, ये काले काले बालों की खातिर, ये गोरे गोरे गालों की खातिर, ये काले काले बालों की खातिर, कभी ना कभी कहीं ना कहीं दिल को लगाना पड़ेगा। है समाना मेरे दिल प्यार का, तू भी प्यार से।

भरी पुड़िया वो छोटी सी पिट्टिया गज भर की चुटिया न कर गुस्सा मेरी गुड़िया।

जानू के ना, तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो तू तुम्हें रोशनी किए देती हूँ।

0: दीवाना तेरे हाथ तेरे नाक का जवाब नहीं ओए ताबा
1: दिल दे दे
0: नहीं नहीं नहीं।